सके पास तो मैं zombie man करता मैं sins मांगू माफी नहीं sweet अड़ हेल तोड़े पाप मेरे रगों में god level threat मैं डालूँगा इंसानों से मेडूसा से zombie अभी harder than your luck I don't need a crew काफी है ये single punch burst open pen और machine gun blow devilish flow I got M34 666 path और हाथ मेरे लाल होता upgrade rose जैसे